केते पवन पनी विसंतर केते कन महेश केते वर में करी करिये रुक करम केवेश कित्या करम पुई मिर केते दूपदेश केते ईशा सुर केते मंदल देश केते सिद्ध वदनत केते देवी वेश केते देव तरन सुन केते हृत समन केत्या कानी केत्या बानी केते पत नरिंद केत्या सुति सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान कान ज्ञान प्रचंत तिते नाथ को ओतनंत सरम कन की वानी रूप तिते गरी गरी वनु थके गला कत्या न जाए जे को कहे कछे पिछताए करम कन की वानी जोर तिते होर न कोए होर तिते जोद महावंसूर तिमे रम गरिया भरपूर तिते सितो सीता में ममाए ताके रूप न कत न जाए नाओ मरण ताके जाए जिनके रम से मनमाए तिते भगत वसे के लो गरिया नन सचा मन सोए सच खंद से निरंकार कर कर वे के नदर नहल तिते खंद मल्ला वर बंदा जे को कहे तन तन अंत तिते लो आकार जीव जी हुकम तवे तिरकार जीव विघा से कर विचार नानक न कर असार जात पहारा दिर सुनियार एरन मात पे तकियार हो कला कन तपताओ बंद पाओ अमृत दान करिय शव सक्षी तक सा जिनको नरम तिंकार नानक नदरी नदर नहाल श्लोक पवन गुरु पानी पिता मत तरत महत दिवस रह तो

सच वक्र जिने लद्या से सच रे पासार पंथा प्रेम न जाने भूले फिर ग्वार नानक हर बिसरा के पोदे नरक अंधियार माया मनो न विसरे मांगे तमाधाम सो प्रभ चित न आवे नानक नहीं करम तिचर मुनस तुरीदो जिचर आप कृपाल शब्द आकुत बाबा नानका काय कर चन मान कंधव कंधर जयला गिना सावी तो तन चराय आपने लहा सो सच न टोल सचन सचा पात शाह सिर शाह शाह जिस पास बैठते सोहे सब ना दावे साहो एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नोवा गुण गोबिंद गाय

सफल होते काम जी पागुन गोबिंद बचो करुण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परन जम के थाम जो प्राणी ममता तजे लोभ मोय अंकार कहो नानक आपन तरे और न लेत उदार जियो सुपना अर फेकना ऐसे जग को जान इनमें कच साचो नहीं नानक बिन भगवान निश्चिन माया कारण प्राणी दौलत नीत खुद न मैं नानक को नारायण जय जीत जस जलते बुद्ध बुदा उपजे बिन सैनीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया का अंत कहो नान बिन हर बचन पड़तता जम फंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक दे माया कारण तब ही मूर्ख लोग अजान कहो नान बिन हर भजन बिरता जन्म सरान जो प्राणी निश्चिन बचे रूप राम ते जाना हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया में फज रहियो बिसरियो गोबिंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौन काम प्राणी राम न चेतई मद माया के अंत कहो नानक हर भजन बिन पड़तता जम फंद सुख में बो संगी भय दुख में रसंग न कोय कहो नानक हर भजमना अंत सहाय होय जन्म जन्म परमत फिरियो मृत्यु न जम को त्रास कहो नानक हर भजमना निर्भय पावे बास जत्न भोत में कर रहियो मृत्यु न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फतियो राख लियो भगवान बाल जुआनी अर बिर तेफुन तीन अवसत्ता जान कहो नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान करनो हुतो सो ना कियो परियो लोभ के फंद नानक समय रम गायो अब क्यों रोभ त अंद मन माया में रम रहियो निकसत नाहन मीत नानक मूर्त चित्र जियो जाज तक नाहन पीत नर चाहत कच ओर ओरे की ओरे भाई चितवत रहियो तागरा नानक फासी गल परी जत्न भोत सुख के किए दुख को क्यों न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत पिकारी फिरते है सब को दाता राम कहो नानक मन सिमरते पूर्ण होवे काम जूते मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान इनमें कच तेरो नहीं नानक कहो बखान गर्भ घर थे देखो बिन से छिन में मीत जे प्राणी हर जस कहियो नानक ते जग जीत जगत सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जे प्राणी के नाय मान जस शुक्र स्वान नानक मानो तय तन स्वामी
एक मन हो एक चित्त तीर्थ परत अरदान कर मन में धरे गुमान नानक ने फल जात ते ज्यो कुंचर इशनान सिर कंप्यो भगटग मगे नैन ज्योत थे नीतना कहो नानक ए बिद पई तो न हर रसलीना निज कर देखियो जागत में को काहु को नाए नानक तेरे हर भगत है तेरा को मन माए जग रचना सब जूत है जान ले ओरे मीत कहे नान तिर न रहे ज्यो बालू की फीत राम गायो रावण गायो जाको भो परवार कहो नान तिर कच नहीं सुपने ज्यो संसार

दे पाठ दीदार त्यान करके खालस जी बोलो जी सतनाम। पंचा प्यारिया चोहा साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हटिया चपिया तपिया जिन्हां नू नाम जपिया वन छकिया देख चनाही देख वाई देख के अंडट कीता

शब्द सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मन खटे नला के मुख, उचल सच करावणिया।